0: एक लम्हे में वो रूठ कर चल दिए। एक लम्हे, शमी भाई जी सुनियो गल
1: जी
2: जी जी जी
0: एक लम्हे में वो रूठ कर चल दिए और मनाने में हमको जमाते लगे।
1: क्या बात है,
0: रोते रोते वो मुस्कुराने लगे। आगे कहना, रात में हमको सोने की फुर्सत कहाँ, रात में हमको सोने की कहना रात से सानू सोने की फुर्सत कित्थे है
1: जी
0: रात में हम

0: लगे
1: क्या बात है।
0: रोते रोते हम मुस्कुराने लगे।
1: बात ही
0: अगे कहना जी ओ काल काल दी जिंदगी बारे पूछता भी कल नू की होएगा।
1: जी
0: उसे कहना

आखदे ने लोक ही काठो कहानिया हड़ एकता दा केड़ा सके रो कहानिया हड़ एकता दा केड़ा सके रो कहानिया हड़ एकता दा बन के कटामाए असी धरती बसनाए बन के कटामाए असी धरती बसनाए धोवांगे गवार जेड़े बिच पौण दे सिर बढ़ने ने सिर बढ़ने ने बीमी सदी दे रोण दे सिर बढ़ने ने सिर बढ़ने ने बीमी सदी दे रोण दे सिर बढ़ने ने बेलड़ा ने माणिया स्वाद है आजादियां दा बेलड़ा ने

रख दे ख्याल पूरा सिरी ते कमीन दा, रख दे ख्याल पूरा सिरी ते कमीन दा, कातों है नी

अद्धी रात तक करना आंदा, अद्धी रात तक करना आंदा, सप्पां दियां सिरियां नप के सौंदा, अद्धी रात तक करना आंदा, सप्पां दियां सिरियां नप के सौंदा। अज हंजू केर रोवे, अज हंजू केर रोवे, अन्न दाता संसार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा। तेरा मेरा करना छट दो, धर्मा पिछे लड़ना छट दो, तेरा मेरा करना छट दो, धर्मा पिछे लड़ना छट दो, किंज पैने फिर कित्ते भंगड़े, किंज पैने फिर कित्ते भंगड़े, की मतलब हो विसाखी दा, किंज रुआब हंडाउणा दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा, किंज रुआब हंडाउणा दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा। वास्ता पंजाबीओ, वास्ता पंजाबीओ, मां धरती दे दुलार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा। बस करो हुण होर नी सहना, बस करो हुण होर नी सहना, पक्षियों वर्गे बनना पैना, बस करो हुण होर नी सहना, पक्षियों वर्गे बनना पैना, इनकलाब ते फिर तो लियाना पैना, इनकलाब दा पुत्तरो लियाना पैना। सच कहंदे ने सियाने झट आई उत्ते आया, सच कहंदे ने सियाने जे झट आई उत्ते आया, सच कहंदे ने सियाने भुखे रोणगे न्याणे, सच कहंदे ने सियाने भुखे रोणगे न्याणे। कुछ तू भी सोच विचार ला रूबी, तू भी सोच विचार ला रूबी, अकलां नू हथ मार ला रूबी, तू भी सोच विचार ला रूबी, अकलां नू हथ मार ला रूबी, तेरे केड़ा छत तों आणे, तेरे केड़ा छत तों आणे, तू भी दाणे आईओ खाणे, तेरे केड़ा छत तों आणे, तू भी दाणे आईओ खाणे। अणख आबरू खोण नी देनी, अणख आबरू खोण नी देनी, धरत मोहताज।

अपने खातर दुनिया मर दी मिटदी आईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए। चरखड़िया ते चढ़ना बंद बंद कटवाना बड़ा ही औखा है, सरबंस बार के धर्म निभाना बड़ा ही औखा है, मखमल छड़ के कंडे आते सोना बड़ा ही औखा है।

हंसांदा मेरा सदमा चन्नांदा जर लांगी मेरा जिगर बथेरा सदमा चन्नांदा।

का सफर, आते जाते हुए मुस्कुराना, हंसते गाते दिन बिताना, हाँ जिंदगी ये कहे।

साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। मौका हरगिज ना तू गवाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये

एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन तू चुप हो जाएगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन चुप तू हो जाएगा। इस बात को भूल न जाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये